0: आप सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और पुलिस
1: छह लग जाओ, दो लग जाओ, ठीक है।